रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के कांटों से चल के मिलेंगे साए बहार के।

कुछ ऐसी एहतियात से निकला है चांद फिर, जैसे अंधेरी रात में खिड़की पे आओ तुम। क्या चांद और जमीन में भी कोई खिंचाव है?

सितारे चांद की कश्ती में रात लाती है, शहर के आने से पहले ही बिक भी जाती है। बहुत ही अच्छा।

से पानी की आवाज लप लप आती है। घाट छोड़ के मांझी तमाम जा भी चुके, चलो न चांद की कश्ती में झील पार करें।

रात को जी बोले पपीहारा भेद खोले तेरा मेरा मेरा तेरा हो भेद खोले तेरा मेरा तेरा जी मैं।

0: करना चाहते हैं।
1: अरे ये क्या कह रही हैं आप,
2: अभी और गाइए।
1: चुप रहो भाई साहब, नाराज हो जाएंगे। और गाइए।
3: हाँ गाओ।
0: नहीं मैं और नहीं गा सकती।
3: गाओ,
1: आपको गाना पड़ेगा।

अब मान भी जाओ, तुम चाहे मुझे बुरा समझो चाहे मुझे अच्छा समझो, मैंने ये सब कुछ तुम्हारा प्यार जीतने के लिए किया। ये ना किसी गरीब का प्यार है, ना किसी अमीर का प्यार है, एक इंसान का प्यार है जिसने तुम्हें अपने दिल से प्यार किया।